लीजिए सामिन, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जंगी मुजरमों की जगह अकवामे मुत्तहिदा का हाल नहीं, अदालतें हैं। ईरान ने कहा है कि मक्का मुआहिदा इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए उठाया गया कदम है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप के इनकार के बावजूद हम आबनए हुर्मुज को बहरी सैर सफर के लिए खोलने की शराइत पर कायम हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जंगी मुजरमों की जगह अक़वामे मुत्तहिदा का हाल नहीं, अदालतें हैं। सदर एर्दोगान ने कहा है कि नस्ल कुशी के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब होना चाहिए और उन पर निगाह रखी जानी चाहिए ताकि वो कमरा अदालत में रहें, अक़वामे मुत्तहिदा के ट्रिब्यून में नहीं। इस्तांबुल में मुनक़दा 21वें बैनुल अक़वामी तजारती मेले मुसियाद एक्सपो और 29वें बैनुल अक़वामी बिजनेस फोरम के इख्तितामी प्रोग्राम से खिताब में उन्होंने कहा है कि जंगी मुजरमों की जगह अक़वामे मुत्तहिदा का हाल नहीं है बल्कि वो कमरा अदालत है जहां इनसे किए गए जराइम और इनके बहाए गए खून का हिसाब पूछा जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर नस्ल कुशी करने वालों को इंसाफ और तारीख के सामने जवाबदेह न किया गया तो इसी जुल्म की तकरार होती रहेगी। फलस्तीनी अवाम के साथ तुर्की की हिमायत का इरादा करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फलस्तीनी अवाम तनहा और बेघर नहीं है। ईरान ने कहा है कि मक्का मुआहिदा इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए उठाया गया कदम है। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने कतर के अल जजीरा टेलीविजन के लिए इंटरव्यू में खित्ते की पेशरफ्तों, अमरीका ईरान मुजाकरात, आबनए हुर्मुज की सूरत हाल और इलाकाई ममालिक के साथ तेहरान के ताल्लुकात का जायजा लिया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे के बारे में सवाल का जवाब देते हुए पेजिश्कियान ने कहा है कि यह मुआहदा मुसलमानों के इत्तेहाद की खातिर उठाया गया एक मुस्बत कदम है। अमरीका के साथ मुजाकरात के बारे में उन्होंने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ मुजाकरात के हवाले से वाशिंगटन पर एतमाद नहीं करता। हमें अमरीकी फरीक पर कोई एतमाद नहीं है और हम नहीं जानते कि किस बुनियाद पर मुआहदा हो सकता है। पेजिश्कियान ने जोर देकर कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अमरीका ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ के बारे में अपना मौकफ वाज़े करेगा। हमने सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान की वसादत से ईरान के पैगाम वाशिंगटन तक पहुँचाए हैं। पेजिश्कियान ने कहा है कि आबनए की बंदिश ईरान के रास्तों पर बंदिश का कुदरती रद्द अमल है। मुजाकरात के जरिए जंग खत्म होने की सूरत में आबनए हुर्मुज को तजारती बहरी जहाजों के लिए दोबारा खोला जा सकता है। पेजिश्कियान ने अमरीका को जंग का जारह करार देते हुए कहा है कि हम इलाकाई पुलिस के जरूरत महसूस नहीं करते। ईरान में हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान तनाज़ात का हवाला देते हुए पेजिश्कियान ने कहा है कि हूसियों की कार्रवाइयों का ईरान से कोई ताल्लुक नहीं। हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, भाई को अपने मुसलमान भाई से नहीं लड़ना चाहिए। ईरान ने कहा है कि हम अमरीका के साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक़ वस्ती में जंग के खात्मे की पेशकश मुस्तरद करने के बावजूद आबनए हुर्मुज़ को बहरी सैर सफर के लिए खोलने की शर्त पर कायम हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन IRIB की खबर के मुताबिक वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान इंतजामिया अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि शरायत में खित्ते में तनाज़ात का खात्मा और महीनों कबल टूटने वाले जंगबंदी मुआहदे के तहत वादों को पूरा करना शामिल है।

हैं। ईरान के वजीर खारजा अराकची ने कहा है कि हमने ट्रंप का पहला रद्द अमल देखा है, लेकिन हम सालिसों की तरफ से सरकारी बयान के मुंतजिर हैं। तवक्को है कि सालिस अपना हतमी मौकफ हमें बताएंगे और हम इसके मुताबिक अपना फैसला करेंगे। अब इंतखाब अमरीका का है। ईरान दबाव, धमकियां या डरावे कबूल नहीं करता। ट्रंप ने ईरान की आबनए हुरमस की पेशकश मुस्तरद कर दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने आबनए हुरमस को नेविगेशन के लिए दोबारा खोलने की ईरान की ताज़ा तरीन पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। हफ्ते के रोज़ टेनेसी में इंतखाबी मुहिम के लिए व्हाइट हाउस से निकलते वक्त सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा है कि मैं इनकी पेशकशों को मुस्तरद करता हूँ। वो एक मुआहदा करना चाहते हैं जिसके साथ वो आबनए को फौरी तौर पर खोलेंगे, क्योंकि इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वो एक मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं, मैं ये समझता हूं, मुझे भी सौदेबाजी करना पसंद है। वाज़ह रहे कि मंसूबे के बवास्ता कतर पहुंचाए गए खाके में ईरान ने कहा था कि अगर अमरीका शराइत मान ले तो वो 7 दिनों के अंदर तस्वीराती लिहाज से अहम आबनाए हुरमस को ट्रैफिक के लिए खोल सकता है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: क्यूबा ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी इज्तमाही सजा है। क्यूबा ने अमरीकी नाकाबंदी को इज्तमाही सजा करार देते हुए मुज़ाकरात का पैगाम दिया है। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगस ने कहा है कि इनका मुल्क अमरीका के लिए खतरा नहीं है और वो खुद मुख्तार मुसावात और बैन अल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास से खिताब में रोड्रिगस ने इस बात पर जोर दिया है कि हवाना इंतजामिया दो तरफा तनाज़ात को अंदरूनी मामलों में मुदाखलत और पेश की शराइत के बगैर हल करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि क्यूबा नहीं, ये नाकाबंदी एक खतरा है। हम दीगर तमाम ममालिक की तरह अमरीका के साथ तजारती इक्तसादी और तआवुन के ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए तैयार हैं। सदर रोड्रिगस ने कहा है कि अमरीका की तरफ से आयद इक्तसादी पाबंदी भी एक इज्तमाही सजा है जो जानबूझकर क्यूबा के खानदानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। रूस ने कहा है कि यूरोप अमन मुजाकरात को कमजोर कर रहा है। न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब में रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक रूस यूक्रेन अमन मुजाकरात के इम्कान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लावरोफ ने कहा है कि मगरब यूक्रेन को वसी पैमाने पर हथियारों की तरसील कर रहा है और ड्रोन तैयारे और मिसाइल फ्राहम करके शहरियों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने में मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि मगरब रूस को स्ट्रेटजिक शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है, ताहम ये कोशिशें जंगजुओं को एक स्ट्रेटजिक बंद गली की तरफ ले जाएंगी। वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने इस बात पर जोर दिया है कि मास्को यूक्रेन में अपने फौजी अहदाफ हासिल करके रहेगा, खा हालात कैसे ही क्यों न हों। आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने कहा है कि हमारी टीम बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेगी। आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन FAI ने ऐलान किया है कि जमहूरिया आयरलैंड की कौमी टीम के खिलाड़ी गजा पर मुसल्लत करदा नस्लकुशी में इसराइल की तरफ से कत्ल किए गए फलस्तीनियों की याद में हंगरी में मतवको आयरलैंड बमकाबला इसराइल वीफा नेशंस लीग मैच में बाजू पर स्याह पट्टियों के साथ मैदान में उतरेंगे। FAI के इंतजामी बोर्ड के सरबराह डेविड कोरेल ने मैच से कबल एक खिलाड़ी के स्क्वाड से निकलने की तस्दीक की है। कोरेल ने कहा है कि कौमी टीम के स्क्वाड में मैदान में उतरने या बायकॉट करने पर करवाई गई रायशुमारी में भारी अक्सरियत ने मैच खेलने के हक में वोट दिया है। खिलाड़ी गजा में नस्लकुशी के दौरान कत्ल किए गए तमाम शहरियों की याद में बाजू पर स्याह पट्टियां बांधने का इरादा रखते हैं। मैच खेला जाएगा या नहीं, इस बारे में क्या सराइयों की वजह से कोच हेमरियाल ग्रेमसन ने एक खिलाड़ी की शिरकत से मैच से कबल मतवको प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई। आयरिश जराए ब्लाक की खबरों के मुताबिक गोलकीपर ग्योबन मानून समेत कई खिलाड़ियों ने इसराइल के खिलाफ खेलने के ख्वाहिशमंदों को स्क्वाड से बाहर करने की दरख्वास्त की। ताहम FAI ने अपने तहरीरी बयान में मुख्तलिफ आरा के बावजूद मैच खेलने की तस्दीक की और कहा है कि फेडरेशन ने यह फैसला खिलाड़ियों से मुशावरत के बाद किया और अक्सरियत ने मैच खेलने के हक में राय दी है। फेडरेशन तमाम खिलाड़ियों के राय का एहतराम करती है और मामले की हसासियत को अहमियत देती है। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं देरिन तुई गुलार और गाया है।

खूब अंधेरा। दोनों तरफ बुलंद होती हुई तारीखी पथरीली दीवारें और इन दीवारों के दरमियान गूंजती कदमों की आवाजें। तस्वीर कीजिए कि आप जमीन के नीचे कई मीटर गहराई में एक तंग गुजरगाह में आगे बढ़ रहे हैं। यहां आप आसमान नहीं देख सकते। आपको घेरने वाली वाहिद चीज पत्थर और मिट्टी की खामोशी है। लेकिन यह कोई आम गार नहीं है, यह एक शहर के बिल्कुल नीचे वक्त का मुकाबला करते हुए मौजूद एक और शहर का वजूद है। तो फिर एक शहर के दिफा का सबसे गैर मामूली तरीका क्या हो सकता है? ऊंची फसीलें खड़ी करना, बड़े बड़े दरवाजे बनाना, या फिर वक्त आने पर इन दीवारों को अपने ही हाथों से गिरा देना। 1191 में अस्कलान में लिया गया फैसला बिल्कुल यही था। दूसरी तरफ अका ने अपने दिफा को जमीन के नीचे पत्थरों के दरमियान खुदी हुई सुरंगों में मुंतकिल कर दिया, और गजा में एक शहर को कायम रखने वाली ताकत न सिर्फ उसकी दीवारों में थी, बल्कि उन रास्तों से गुजरने वाले स्कॉलर्स, कारवानों और सदियों के जमा करदा गहरे विरसे में पोशीदा थी। फलस्तीन के जुग्राफिया की तकदीर लिखने वाले तीन तारीखी शहर, दिफा की तीन अलग कहानियां, और इन सब में एक मुश्तरक सवाल, एक शहर और वतन की हकीकी मानों में हिफाजत कौन सी चीज करती है? अका बाहर रूम के साहिल पर एक कुदरती खलीज की गोद में आबाद कदीम मुहिमजुई का मरकज और बंदरगाही शहर। यह सदियों तक तिजारत, फौजी नकलो हरकत और हज के रास्तों का अहम तरीन पड़ाव रहा। जैसा कि यूनेस्को ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अका कुरून वुस्ता से लेकर आज तक जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सांस लेते हुए एक गैर मामूली तारीखी विरसे का मालिक है। ममलुक दौर में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के बाद सलीबी शहर का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के नीचे दब गया और इसके ऊपर मौजूदा उस्मानी शहर तामीर किया गया। आज जमीन के नीचे इस तह में मौजूद सड़कें, मोहल्ले, इमारतें और एक पेचीदा जेर जमीन ढांचा इसी तरह महफूज है। अका की कहानी बिल्कुल इसी जगह से शुरू होती है। अगर एक शहर जमीन के ऊपर तबाह भी कर दिया जाए, तब भी वो जमीन के नीचे जिंदा रह सकता है और अपनी शनाख्त बरकरार रख सकता है। इस जेर जमीन नेटवर्क की सबसे मशहूर इमारतों में से एक टेम्पलर्स टनल है। आसार कदीमा की तहकीकात से पता चलता है कि तकरीबन 350 मीटर तवील यह पथरीली राहदारी बंदरगाह को तस्वीराती मकामात से जोड़ने वाली एक खुफिया लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जब जमीन के ऊपर जिंदगी रवा दवा थी, तो जमीन के नीचे शहर की सलामती और राबते को यकीनी बनाने वाली एक खुफिया रिक का काम करते ही थी। बिलाशुबा अका की मजाहमत की कहानी सिर्फ कुरून वस्ता तक महदूद नहीं रही। जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस शहर का मुहासरा किया, तो जजार अहमद पाशा की क्यादत में उस्मानी फिलिस्तीनी दिफा ने फ्रांसीसी फौज को शिकस्त देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अका ने दुनिया के सामने एक बार फिर साबित किया कि जब सही हिकमत अमली को यकजा किया जाए, तो पत्थर किस तरह एक लाजवाल मजाहिमत में बदल जाता है। जब हम साहिल के साथ साथ जुनूब की तरफ बढ़ते हैं, तो अस्कलान हमारा इस्तकबाल करता है। मिस्र और शाम, बिलाद-उश-शाम के दरमियान अपने तस्वीराती महल वकूह की वजह से अरब जोग्राफिया में उरूस-उल-शाम कहलाने वाला यह कदीम शहर अपनी नाकाबिल तस्खीर दीवारों के लिए मशहूर था। ताहम तारीख में अस्कलान की सबसे इनकलाबी कहानी इन दीवारों को गिराने से लिखी गई। 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शहर को सलीबियों से वापस लिया, लेकिन चंद साल बाद जब तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई, तो इस बात का खतरा पैदा हो गया कि यह शहर दुश्मन के हाथ लगकर एक मजबूत फौजी अड्डे में तब्दील हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने 1191 में एक इंतहाई मुश्किल लेकिन तस्वीराती फैसला लेते हुए अस्कलान की दीवारों को गिराने का हुक्म दे दिया। एक शहर की हिफाजत के लिए उसकी अपनी दिफाई दीवारों को अपने ही हाथों से तबाह कर देना, पहली नजर में यह एक बड़ा तजाद मालूम हो सकता है, लेकिन जंगी कानून और हिकमत अमली में यह एक इंतहाई निपातुला कदम था, क्योंकि मकसद अपनी दीवारों में पनाह लेना नहीं था, बल्कि दुश्मन को इस ताकत को दोबारा फलस्तीनी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकना था। दर हकीकत अस्कलान की दीवारें सिर्फ एक दिफाई लकीर नहीं थीं, वो इस जमीन पर हाकमियत, फख्र और शनाख्त की अलामत थी। और गजा
غزہ میں کہانی کسی قلعے سے بڑھ کر کچھ اور بن جاتی ہے، کیونکہ غزہ کو سمجھنے کے لیے نقشے اور اس نقشے سے گزرنے والے راستوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ مصر اور شام کے درمیان اہم ترین شاہراہ پر واقع غزہ تاجروں، زائرین اور فوجوں کا گزرگاہ تھا، لیکن اس شہر کا شاید سب سے کم جانا جانے والا پہلو اس کا ایک عظیم علمی مرکز ہونا تھا۔ آج غزہ کا نام بدقسمتی سے اکثر قبضے اور جنگوں کے حوالے سے لیا جاتا ہے، حالانکہ معتبر جرنل آف دی رائل ایشیاٹک سوسائٹی میں شائع ہونے والی ایک تعلیمی تحقیق تاریخی دستاویزات کے ساتھ یہ واضح کرتی ہے کہ مملوک دور میں غزہ کس طرح ایک علاقائی فکری اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا تھا۔ 1260 سے 1516 کے درمیان غزہ میں کی جانے والی سرمایہ کاری نے یہاں مضبوط تعلیمی اداروں کے قیام اور علماء کے ایک وسیع حلقے کی تشکیل کی بنیاد رکھی۔ ایوبی اور مملوک دور میں مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے بہت سے محدثین اور علماء نے غزہ میں قیام کیا، یہاں حدیث کا درس دیا اور تصانیف لکھی۔ یعنی غزہ نہ صرف کاروانوں کا بلکہ فکر اور علم کا بھی پڑاؤ تھا۔ آپ کسی شہر کی عظمت کا اندازہ صرف اس کی دیواروں کی بلندی سے نہیں بلکہ اس کے پیدا کردہ اور مہمان نوازی پانے والے انسانوں سے لگا سکتے ہیں۔ آقا نے ہمیں زمین کے نیچے چھپی مزاحمت دکھائی، اسقلان نے وقت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار تصویراتی سوچ سکھائی، اور غزہ نے یہ ثابت کیا کہ راستے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ علم اور ثقافت کو بھی منتقل کرتے ہیں۔ لیکن انسان نے زمین کو ناپنا، دیواروں کو بلند کرنا اور زیر زمین سرنگیں کھودنا سیکھنے کے بعد اپنی نظریں ایک اور جگہ جما دیں، آسماں پر۔ رات کے وقت قلعوں میں پہرہ دینے والے اندھیرے میں اکیلے نہیں تھے، ان کے سروں کے اوپر موجود ستارے انہیں سمت، وقت اور فاصلے کا پتہ بتاتے تھے۔ انسان نے نہ صرف شہر کی حفاظت کی بلکہ اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے آسمان کو پڑھنا بھی سیکھا۔ تو پھر انسان نے آسمان کو ایک نقشے کی طرح پڑھنا کب اور کیسے شروع کیا؟ اگلی قسط میں ہم زمین کے نیچے سے آسمان کی لاپتہ وسطوں تک پھیلے ہوئے اس سحر انگیز سفر پر روانہ ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

इथियोपिया में 2020-2022 के दरमियान होने वाली तिग्रे जंग भले ही प्रिटोरिया मुहदे के साथ इख्तिताम पजीर होगी, लेकिन इस तनाज़े को जज़्म देने वाले बुनियादी सियासी ज़मीन तनाज़ात का एक बड़ा हिस्सा अब भी हब तलब है। हाल में मगरबी तिग्रे में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मी को महज वफाकी हुकूमत तिग्रे फोर्सेज के दरमियान एक नए सिक्योरिटी तनाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वेलकाइट के गिर्द घूमने वाली कशमकश इथियोपिया के अंदरूनी सियासी तवाजन को एक वसी तर इलाके सिक्योरिटी बहरान में तब्दील करने की सलाहियत रखती है, जहां सूडान की जंग इरिट्रिया के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात और अमहरा खित्ते में फानों की बगावत एक दूसरे से जड़ रहे हैं। हम इस मौजू पर ओरसाम के शुमाली और मशरक अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर क्यान देवेजी ओलू का तजिया पेश कर रहे हैं। वेलकाइड की अहमियत सबसे पहले इसके जोग्राफी से है। मगरबी तिग्रे में सूडान और इरिट्रिया की सरहदों तक फैला हुआ इलाका इथियोपिया के शुमाल मगरबी राहदारी का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही जरूरी पैदावार, सरहदी तजारत सूडान के जरिए बैरूनी दुनिया तक रसाई के रास्तों के लिहाज से स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। लिहाजा वेलकाइड पर कंट्रोल का मसला तिग्रे और अमहारा के दरमियान तरही मुल्कियत की बहस से बढ़कर अदी से अबाबा के लिए मुल्की सरहदी सिक्योरिटी और इलाकई रबतों से बहरास जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत तिग्रे फोर्सेस की तरफ से इस इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश को महज एक मामूली मकामी जमीनी तनाज़े के तौर पर नहीं देखेगी। असल खतरा इथियोपिया में मुख्तलिफ तनाज़ात के नेटवर्क का आपस में तेज से जुड़ जाना है। वफाकी हुकूमत को एक तरफ अमहारा खित्ते में फानों की तंजीमों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ ओरोमिया में सिक्योरिटी के मसाइल को संभालना है। तिग्रे के महाज का दोबारा खुलना अदीस अबाबा की फौजी सलाहितों को बैक वक्त कई महाजों पर तकसीम करने का सबब बन सकता है। वफाकी हुकूमत की जानब से हालिया अयाम में बड़े पैमाने पर जमीनी कार्रवाई के बजाय फजाई ताकत और ड्रोन्स को तरजीह देने वाले महदूद फौजी नुकता नजर को भी इसी तनाजर में देखा जा सकता है। इस सूरतेहाल तनाजर को कंट्रोल में तो रख सकती है, लेकिन जब तक सियासी मसाइल हल नहीं होंगे ये सिर्फ एक नई जंग की कीमत को आगे बढ़ाने का सबब बनेगी। इससे भी ज्यादा काबिल तवज्जो बात यह है कि 2020-2022 की जंग का इतिहाद अब उलटना शुरू हो गया है। तिग्रे फोर्सेस फानों के कुछ अनासर इरिट्रिया माजी में एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिब अनासर हैं। आज इन तमाम कुवतों का मुश्तरक नुकता अदीस अबाबा हुकूमत के खिलाफ बढ़ती हुई नाराजगी बन रहा है। इसका एक और मुस्तकिल अदारा जाती इतिहाद में तब्दील होना आसान नहीं है। इनके दरमियान तारीखी तनाजा, जमीन के मुतालबात, बाहमी बेएतमादी इंतहाई शदीद है। इसके बावजूद मुश्तरक खतरे का एहसास इन्हें हिकमत अमली ऑपरेशनल सतह पर बैक वक्त कार्रवाई करने का मौका फराहम कर सकता है। अदीस अबाबा के लिए असल खतरा यही है। दरहकीकत वफाक हुकूमत के सामने नजरियाती तौर पर मुतहद एक वाहद महाज के बजाय मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतहरिक लेकिन बैक वक्त दबाव डालने वाले मुतअद्दिद अदाकार उभर रहे हैं। सूडान की जंग इस मुसावात को मजीद पेचीदा बना रही है। खरतूम अदीस अबाबा के दरमियान बेइतमादी खासतौर पर सूडानी फौज की इन शुबहात की वजह से कि इथियोपिया आरएसएफ के लिए जगह फराहम कर रहा है। इथियोपिया की मरबी सरहद पर मकामी तनाजात को बरह